जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

नमस्कार, जय हिंद। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक और खूबसूरत और प्यारा दिन, महामाई की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और अपने मन में ये धारण कर लीजिए कि महाशक्ति आपके साथ है। जिस इंसान को जीवन में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा रूपांतरण करना है, अपना जीवन बदलना है, हम सब बदलना चाहते हैं, तो अगर ऐसा चाहिए तो मन में ये बात हमको धारण करनी होगी कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत और पावन भजन के साथ।

जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि बीते कई दिनों से नवरात्रों की इस स्पेशल कार्यक्रम में हम महामाई जगदम्बा की बात कर रहे हैं, उनकी अलग अलग शक्तियों की, अलग अलग रूपों की बात कर रहे हैं। हमने 10 महाविद्याओं की भी चर्चा की, हमने नव दुर्गाओं की 9 रूपों के स्वरूप की भी बात की, कौन सा रूप हमको क्या देकर जाता है, हमको कब कौन सी पूजा करनी चाहिए ये बात भी हमने की। आप कौन सी पूजा करते हैं वो हमें बता सकते हैं। कई सारे सवाल मेरे पास आए जिनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, क्या 10 महाविद्याओं की पूजा नवरात्रों में भी की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, 10 महाविद्याओं की उपासना नवरात्रि के दौरान भी की जाती है, विशेषकर उन साधकों और शाक्त परंपराओं में जो इन स्वरूपों की आराधना करते आए हैं। लेकिन सामान्य शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों तक नव दुर्गाओं की ही पूजा अधिक प्रचलित होती है। महाविद्याओं की कुछ साधनाएं विशिष्ट मंत्रों, विधियों और गुरु परंपरा से जुड़ी हुई होती है। यानी 10 महाविद्याओं के कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जिनसे आप उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ना एक खास पद्धति होती है, खास तौर तरीका होता है जिस तरीके से हम 10 महाविद्याओं की अलग अलग पूजा आराधना करते हैं, और वो हमें किसी न किसी गुरु के अंडर में ही रहकर करनी चाहिए। अगर आप किसी को सिद्ध भी करना चाहते हैं तो, अगर आप सिद्ध नहीं करना चाहते खाली प्रार्थना करना चाहते हैं तब आप जरूर कर सकते हैं नवरात्रों में किसी भी रूप की आप पूजा करें। महाविद्याओं की कुछ साधनाएं विशिष्ट मंत्रों से होती हैं, इसलिए स्पेशल होते हैं। जैसे माँ बगलामुखी की अगर बात करें तो हिलीम उनका बीज मंत्र है, और उनका मंत्र है ओम हिलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवाहम कीलय बुद्धिम विनाशय हिलीम ओम स्वाहा। तो आपके गुरु आपको क्या मंत्र देते हैं, पहले शुरुआत कहां से करते हैं, वो सब एक अलग तरीका है। यानी सिद्ध करना एक अलग बात है और पूजा आराधना अपने घरों में करना एक अलग बात है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जय माता की। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। माँ दुर्गा का निर्वाण मंत्र, ये देवी उपासना का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र और दुर्गा सप्तशती की परंपरा में विशेष महत्व रखता है। और ये है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सरल शब्दों में क्या अर्थ है? यह देवी चामुंडा की उपासना का बीज मंत्र होता है। इसके बीज अक्षरों को परंपरागत रूप से ज्ञान, शक्ति और दिव्य ऊर्जा से जोड़ा जाता है। तो जब कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। जब तक फीलिंग नहीं होगी, मन के अंदर भाव नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं। फिर आप इस बीज मंत्र का जो जाप कर सकते हैं वो 9 बार 11 बार या 27 बार करके शुरू कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू 9, 11 या 27 से कर सकते हैं। बीज मंत्रों की विशेष साधना के लिए अपनी परंपरा के योग्य गुरु से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब भी आप किसी मंदिरों में जाएंगे, ऐसे बड़े जो सिद्ध पीठ होते हैं वहां पर जो गुरु मिलते हैं, या जो अगर आपके कोई ऐसे गुरु, बिना गुरु की दीक्षा के इस तरह की सिद्ध करने वाली जो साधनाएं होती है वो नहीं करनी चाहिए। उसको गुरु की ही देखरेख में करना चाहिए, लेकिन माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने हवन पूजा करते रहना चाहिए और पूजा अर्चना करते रहनी चाहिए। आप कोई भी एक मंत्र पकड़ सकते हैं और वहां से शुरुआत कर सकते हैं।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये एक बीज मंत्र होता है ना, माँ दुर्गा का। लेकिन जो बीज मंत्र होते हैं ये किसी गुरु की देखरेख में ही हमको इनका जप करना चाहिए कि हमें पूजा कैसे करनी है। हालांकि जो हमारी धर्म की किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें उल्लेख मिलता है, आप पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ, तुम सभी को करना चाहिए। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं होते, कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसा योग्य गुरु अगर किसी के पास नहीं है और हमको पूजा करनी है तो हम कैसे करें। तो उसका जवाब यह है कि भगवान शिव को सर्वप्रथम

हमें गुरु मानना चाहिए। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, इस सारे संसार के जो गुरु है ना, वो भगवान शिव है, उनको मान लेना चाहिए। अगर आपके पास आपके कोई योग्य गुरु नहीं है या अभी तक नहीं मिले हैं, तो भगवान शिव को अपना गुरु धारण कर लीजिए और मान लीजिए, और उनको गुरु मानकर फिर आप माँ दुर्गा की किसी भी शक्ति का, किसी भी रूप का, किसी भी बीज मंत्र का पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। माँ दुर्गा के ना बहुत कुछ सरल से मंत्र है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ओम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, है ना, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये भी एक मंत्र है। इसके अलावा देखिए, नौ स्वरूप जो होते हैं ना, माँ शैलपुत्री, ओम देवी शैलपुत्रये नमः, माँ ब्रह्मचारिणी का ओम देवी ब्रह्मचारिणये नमः, माँ चंद्रघंटा का ओम देवी चंद्रघंटाये नमः, माँ कुष्मांडा ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम स्कंद माता यानी ओम देवी स्कंद माताये नमः। ऐसे ही हर रूप और स्वरूप का अलग अलग मंत्र और बीज मंत्र होता है, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, हालांकि कभी कोई नुकसान नहीं होता। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो इंसान करता है, उसे दुश्मन छू भी नहीं सकता, और उसको हर रोज आगे बढ़ने की जो शक्ति मिलती रहती है, जिंदगी की शक्ति मिलती रहती है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आपको लगातार मेहनत करनी होगी, भगवान भी हमारी मेहनत में ही फल देते हैं। तो केवल पूजा पाठ ही करते रहने से कुछ नहीं हासिल होगा, हमारे किए गए कर्मों को ही ज्यादा पावरफुल बना देते हैं ये मंत्र और ये पूजा आराधनाएं, चाहे वास्तु की शक्ति हो, ज्योतिष की शक्ति हो, माँ दुर्गा के किसी बीज मंत्र की शक्ति हो, दुर्गा सप्तशती की शक्ति हो, ये सब हमारे काम को पावरफुल बनाते हैं, रिजल्ट को पावरफुल बनाते हैं। पूजा करते रहें और कोई कार्य न करें, ऐसा कभी भी भगवान नहीं कहते।

0: क्या देवी?
1: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
0: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा।

0: माँ दुर्गा के अनंत रूप और स्वरूप है और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा आराधना होती है। देखिए, मैंने आपको कई तौर तरीके, कई रूप स्वरूप के बारे में पहले भी बताया है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी पूजा है, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आमतौर पर बहुत से लोग जानते हैं और समझते हैं। तो देवी कवच आप जरूर इसका पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का। देवी महात्म्य या चंडी पाठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण का यह प्रसिद्ध देवी उपासना है, आप इसको जरूर कर सकते हैं। आप इसमें परंपरागत रूप से या तो 13 अध्याय करें, जो कि तकरीबन 700 श्लोक माने जाते हैं। इसमें देवी के महिषासुर और अन्य असुरों पर विजय के प्रसंगों के माध्यम से धर्म शक्ति और अधर्म पर विजय का वर्णन मिलता है। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। देवी कवच रक्षा और कृपा की प्रार्थना है। अर्गल स्त्रोत देवी से कल्याण और मंगल की प्रार्थना है, ये भी आप कर सकते हैं। कीलक स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। चंडी का पाठ कहा जाता है इसे, चंडी पाठ की परंपरा से संबंधित ये स्त्रोत है, ये कर सकते हैं आप कभी भी। नवरात्रों में तो जरूर करना चाहिए।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर जीवन धारा सुप्रभात, सुनते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, आपका स्वागत करता हूँ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना वास्तु कृष्णा, और हम महामाई जगदम्बा अम्बे अम्बा अम्बालिका माँ त्रिपुर भैरवी सुंदरी महामाई पीताम्बरा माँ कात्यायनी, किसी भी रूप में उसको आप पूजें, वो सुनेगी आपकी, वो आप ही के साथ हैं, कभी वो हमको अकेला नहीं छोड़ती हैं। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमें माँ दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा करनी चाहिए, हमें कौन से पाठ कर लेने चाहिए, क्या हर व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। देखिए, अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर आपके पास समय और अभ्यास है तो किसी प्रामाणिक पाठ पुस्तक के अनुसार, मतलब कोई किताब आप लेकर आ सकते हैं, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो किसी जानकार आचार्य की सहायता लेनी चाहिए। एक तौर तरीका होता है किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए, किसी खास रूप को, किसी पूजा को करने के लिए कोई सिद्ध आदमी जो अच्छे पंडित होते हैं, जो करते रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें गुरु धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि रोज आप एक घंटा दो घंटा बैठकर पूजा कर सकते हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। देवी के सरल मंत्र है इसमें, और देवी मैया का जो स्त्रोत है वो भी इसमें होता है, तो ये सब आप शुरू कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र तो इतना पावरफुल होता है, आप गायत्री मंत्र चाहे रोज करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सदमार्ग की ओर प्रेरित करती है। माँ गायत्री को गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वैदिक परंपरा में ज्ञान और समृद्धि की प्रेरणा के रूप में भी पूजा जाता है। गायत्री मंत्र सूर्य सविता की उपासना से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है, और ये मंत्र तो आपके बच्चे बच्चे को आना चाहिए। क्या मंत्र है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। सुबह स्नान करके स्वच्छ स्थान पर बैठे, मन को पवित्र करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना एक प्रचलित परंपरा है, पर आप पश्चिम की दिशा में भी बैठेंगे, वो भी गेंस की दिशा है, वहां पर भी आप मुख कर सकते हैं। माँ गायत्री का पूजा आप करना शुरू कर दें, सूर्य देव के सामने बैठे, यानी सुबह सुबह करेंगे तो और पावरफुल होता है, सूर्य के सामने बैठकर करेंगे तो और अच्छा होता है, नहीं तो आप दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। कुछ क्षण मन शांत करके गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, 11 बार करना चाहिए, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं टाइम है तो। और अंत में समृद्धि, परिवार के कल्याण, संसार के कल्याण, सभी के मंगल की प्रार्थना करके अपना अनुष्ठान पूरा करें। शाम को भी कर सकते हैं, सुबह को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। शक्ति हर वक्त स्फुटित हो रही है हमारे चारों तरफ, हमें उसे ग्रहण करना आना चाहिए।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया

0: सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सरदर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपने डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी
सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी के डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले, सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने, जितने समय दवा खाने के लिए बोले, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं, इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी
आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कई। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती हैं। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है। ये मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें, उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है सेहत सही लाभ कई, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है। विकास केवल लोगों की संख्या से नहीं होता, विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, बच्चे सुरक्षित और पोषित हों, महिलाओं को सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पुरुष परिवार की जिम्मेदारी में बराबर भागीदार

निभाए, युवाओं को अपने भविष्य के लिए सही अवसर मिले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जनसंख्या से। परिवार के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पति पत्नी परिवार से जुड़े फैसले मिलकर साथ में लें, बच्चे और उनके बीच का उचित अंतर रखना, कितने बच्चे होने चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर बच्चे पैदा नहीं करने, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दादी नानी, कोई मोहल्ला, कोई पड़ोसी, कोई यार रिश्तेदार बोले कि नहीं बच्चे और पैदा करो तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अधिकार केवल आपका है। आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है। ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों, बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज की इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो

पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: देती है? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: आपने सुना यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल है सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है
0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्योनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर, संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: आरजीवंशी ने स्टूडियो है. हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजीवंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाले प्रोग्राम नाम है जिसका सेहत सखी और संसार. 9:11 हो गई है. 15 अक्टूबर आज की तारीख है, गुरुवार आज का दिन है, गुड वाली मॉर्निंग है और गुड वाला डे है ना. बाहर आप देखेंगे तो मौसम बहुत ही बेहतरीन हो रखा है और आज का जो यू नो वर्ड ऑफ द डे है हमारी प्लेलिस्ट का, वो भी मौसम ही होने वाला है. मौसम से संबंधित कुछ गाने सुनेंगे. बाकी चलिए आपको आज का फॉर्मूला ऑफ द डे बता देती हूँ. जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है. सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त, समय को ही सही बनाना पड़ता है. और दोस्तों जब हम इस विचार के बारे में जानते हैं या और भी जानने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीवन कभी भी फूलों की सेज नहीं होता. यहाँ हर कदम पर चुनौतियाँ, संघर्ष और इम्तिहान होते हैं. यदि हम ये सोच लें कि सब कुछ आसान हो जाए तो ये हमारी भूल होगी. असली समझदारी इसमें है कि हम खुद को इतना सक्षम और मजबूत बनाएं कि हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके. और इसीलिए अक्सर हम किसी काम को टालने के लिए कह भी देते हैं, अभी सही समय नहीं आया है. लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जीवन में कोई भी समय अपने आप में सही या गलत होता ही नहीं है. आपके निरंतर प्रयासों, समर्पण और फैसलों से ही कोई समय सही समय बन पाता है. इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. इस बात को हमेशा याद रखिए और इसलिए बहाने छोड़ें, शुरुआत करें आज से ही, अभी से ही अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं और साथ ही साथ अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखें. मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपका हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए और समय के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत के मेहनत से समय को अपने अनुकूल बनाना सीख लीजिए. और आज का संकल्प ये रहेगा कि आज मैं किसी भी मुश्किल से घबराऊंगा या घबराऊंगी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करूंगी. और अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं प्रतिदिन तो आप देखिएगा कि आपकी जो रेगुलर रूटीन में पॉजिटिविटी की लहर आएगी, आपका जो ऑरा पॉजिटिव होगा उसके क्या ही कहने होंगे. फिलहाल जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज कुछ मौसम से संबंधित गाने हम सुनेंगे. मधुमती मूवी का गाना हम इंजॉय करेंगे. 1958 में ये मूवी आई थी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी. आई होप आपको ये गाना पसंद आएगा. बाकी कुछ कहना है, कुछ बताना है, घुमा सकते हैं, लगा सकते हैं 9639010111.

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
3: Let's start.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर हाजिर हूँ फिर से आपके पास। और गुड वाली मॉर्निंग तो चल ही रही है, 9:30 हो गई हैं। और मेरठ की बात करें तो यहाँ मौसम का हाल बहुत ही बढ़िया हो रखा है, इसीलिए मौसम का जादू अभी आपने गाना एंजॉय किया। बाकी यहाँ पर कभी भी झमाझम बारिश हो सकती है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, सूर्य देव कहीं चले गए हैं थोड़ी सी देर के लिए। अब देखते हैं कि वो कब आते हैं या नहीं आते हैं या बारिश ही आएगी। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि आज की तारीख में क्या है खास और आज का क्या कहता है इतिहास। आपको बताऊं, 1932 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और विमानन प्रेमी जे आर डी टाटा ने कराची से बॉम्बे के बीच देश की पहली कमर्शियल विमान सेवा यानी कि टाटा एविएशन सर्विस की उड़ान भरी थी। आगे चलकर यही एयरलाइन एयर इंडिया के रूप में देश की पहचान बन गई थी। वहीं 1942 की बात करें तो आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के भीतर महिलाओं की एक विशेष रेजिमेंट झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की आजादी में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। वहीं आपको बताऊं, साल 1997 की बात तो आपको बताऊं, विश्व की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम ब्राह्मोस था उसका विचार आया था। हालांकि इसका सफल परीक्षण बाद में हुआ था, लेकिन इसी दिन भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौते की रूपरेखा तैयार की गई थी। 2008 की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO द्वारा देश के पहले मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया गया था, जिसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के शुरुआती साक्ष्य जुटाने में ऐतिहासिक भूमिका भी निभाई थी। तो ये भारत के लिए काफी प्राउड वाली मोमेंट थी। 2008 में ये काफी बड़ी उपलब्धि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब तो उसके आगे हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि आज का दिन और भी क्यों है खास। बाकी आपके लिए अगर आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा। इस नंबर पर कॉल मैसेज के साथ साथ आप किसी गाने की फरमाइश कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ, कभी मौसम हुआ रेशम, अभिजीत भट्टाचार्य का ये बहुत ही प्यारा सा गाना। ओ माय गॉड, जब भी अभिजीत के गाने आते हैं तो मैं तो सुध बुध खो बैठती हूँ। फिलहाल

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, नया जॉयज मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना भी हमने एंजॉय किया बरसात के मौसम में और तन्हाई के आलम में। बाकी बरसात यहाँ पे इतनी तेज शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि आज मैं मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं नाइट शिफ्ट में ऑफिस में हूँ। यस, इतना अंधेरा है जैसे कि शाम के 7:30 बजे हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, सुबह के 9:55 हो गए हैं एज पर माई स्टूडियो क्लॉक। 15 अक्टूबर आज की तारीख है, गुरुवार आज का दिन है और बहुत सारी बातों के साथ आर जी वंशी आपके साथ है प्रोग्राम सेहत सखी और संसार में। इसी के साथ दोस्तों, चलिए आपसे बातें कर रहे थे कि आज का दिन क्यों खास है, तो आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन आज के दिन का हो जाता है। 1931 में इनका जन्म हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, देश के महान वैज्ञानिक रहे हैं और मिसाइल मैन के नाम से हम सभी इनको जानते हैं। पूरी दुनिया में इवन ये इस नाम से विख्यात है। इसी के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म इसी दिन रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके जन्म दिवस को भारत में विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 1542 की बात करें तो मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक में गिने जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म भी आज के दिन अमरकोट यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान में है वहां पर हुआ था। वहीं 1910 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, समाजवादी विचारक रहे, ओजस्वी वक्ता और राजनीतिज्ञ का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। वहीं स्वाति तिरुमल का जन्म भी आज के दिन हुआ था 1813 में। अब मैं बता देती हूँ ये कौन है, केरल के महाराज जो एक महान संगीतकार और कला संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, ये वो हैं, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, फिलहाल चलिए अपकमिंग गाना इज वेटिंग फॉर यू, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: हेलो आजाद हिंद रेडियो, राम राम। आम तो आजाद हिंद रेडियो अमे घना लांबा समय थी सांभवे छी अन जे इमाय आज जे वंशी बहन नो जे कार्यक्रम आवे छे बपोरे 11 वाग्या थी 1 वाग्या सुधी, ई कार्यक्रम नी तो वात ज एक अलग छे। इमा खूब मजा आवे छे अने साथे साथे आपने पोताना पसंदगीना हिंदी सॉन्ग सांभळवानी खूब मजा आवे छे अने साथे खास साथे जे सुरक्षानी जे सलामतीनी अने जे घरगथ्थु उपचार होय जे सर्दी खांसी आवी नानी नानी बाबतोनु वंशी बेन खूब नानी नानी वातो थी अमने अपडेट आपता रहे छे। ते बदल वंशी बेन नो हूँ दिल थी खूब खूब आभार मानु छु अने गुजरात मा घणा बधा आजादी रेडियो ना श्रोता मित्रो छे अने वंशी बेन नी वातो खूब सरस होय छे। नाना पाळिया थी ने जसमत भाई तालुको जिलो बोटाद गुजरात, आजाद हिंद रेडियो, खुश रहो आजा मजा मा रहो, नमस्ते।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
4: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर फिर से आपके पास हाजिर हूँ. और इसी के साथ 10:15 हो गए हैं और 15 अक्टूबर आज की तारीख है. जैसा कि मैंने आपको बताया आज के इतिहास के बारे में और बताया कि आज का दिन क्यों खास हो जाता है, क्योंकि आज हम मनाते हैं स्टूडेंट्स डे भी. जी, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में. 1931 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन. और वहीं आपको बता दूं आप सभी को कि आज कुछ लोग हमें अलविदा कहकर भी गए थे, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात साहित्यकार, इतिहासकारों, देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठन भारतीय विद्या भवन के संस्थापक रहे हैं, जिनका नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी. इनका देहांत हो गया था 1971 में आज ही के दिन. और इसी के साथ भारत के महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का निधन भी आज ही के दिन हुआ था. 1898 में सर सैयद अहमद खां का निधन हुआ था. इसी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार द्वारका प्रसाद मिश्र का जो निधन है वो भी आज के दिन हुआ था 1988 में. इसी के साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे, साथ ही साथ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी कि विश्व हाथ धुलाई दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है. इसका जो मोटो है, स्वच्छता के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना और बीमारियों से बचाव के लिए हर साल इसको 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है. वहीं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है. कृषि विकास, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा में ग्रामीण महिलाओं के बहुमूल्य योगदान को सराहने का ये दिन है और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है. बाकी मौसम, क्योंकि औसम हो रखा है, गाने भी मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ आपके लिए. मौसम वाले, बरसात वाले, कुछ शिकायतें हैं किसी गाने में, किसी में प्यार मोहब्बत है, किसी में तो कुछ सोच में डूबे हुए हैं लोग और कहीं पर लोग रिपट रहे हैं ना. तो चलिए बरसों रे मेघा मेघा गाने इंजॉय करेंगे. गुरु मूवी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा, यू नो, बहुत सूदिंग सा गाना है ये. आई होप आपको पसंद आएगा. चलिए इस गाने को इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें.

0: 91.0 FM।
1: हेलो वंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 10:30 हो गई हैं। चमेली मूवी का काफी बेहतरीन सा गाना एंजॉय किया और बाहर अभी मैं देख करके आई हूँ मौसम का हाल, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रखी है और इस बारिश से ना मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान आपको खासतौर पर रखना है और अगर घर में एसी कूलर चला रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप बंद कर दें क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बताऊं 15 अक्टूबर है आज और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन आज के दिन मनाया जाता है। यदि ये वो दिन होता है जब हमारे समाज की उन अन्नदाताओं और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली ग्रामीण महिलाओं को समर्पित किया जाता है ये दिन, और जो खेतों से लेकर के खलिहान तक और घर परिवारों से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक अपना अमूल्य योगदान देती हैं उन महिलाओं के लिए दिन है। और आपको बताऊं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली ने अपने 18 दिसंबर 2007 के प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये मनाया गया था 15 अक्टूबर 2008 को। वहीं इसका उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं और कन्याओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और उनके अधिकारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा करना होता है। और बताऊं आपको भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो ग्रामीण महिलाओं की भूमिका और भी ज़्यादा अधिक अहम हो जाती है। उन्हें अक्सर भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और किसी भी कार्य की बात करें, बुआई की बात करें, निराई गुड़ाई की बात करें, फसल कटाई की बात करें, बीज चयन भंडारण जैसे कृषि कार्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले ग्रामीण महिलाएं खुद ही संभाल लेती हैं। दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मवेशियों की देखरेख में ग्रामीण महिलाओं की प्रत्यक्ष और सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। वहीं खेतों से लेकर रसोई तक वो न केवल अन्न उपजाने में मदद करती हैं बल्कि ये भी सुनिश्चित हैं कि परिवार और समाज तक पौष्टिक आहार पहुंच रहा भी है या नहीं। पारंपरिक बीजों के संरक्षण की बात करें, जैविक खेती के तरीकों और स्थानीय कला संस्कृति को जीवित रखने में ग्रामीण महिलाओं का जो योगदान है वो बिल्कुल इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, इसीलिए उनको समर्पित आज का दिन होता है। बाकी भी की बातें भी आपको बताऊंगी लेकिन फिलहाल चलती का नाम गाड़ी से ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। इस गाने को एंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। 10:33 एज पर माय स्टूडियो क्लॉक कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें लेकर हाजिर हूँ फिर से आपके पास। और क्योंकि आज है 15 अक्टूबर और टाइम की बात करें तो 10:53 हो गई हैं। और 15 अक्टूबर को ना हर साल स्टूडेंट दिन के अलावा, यानी कि स्टूडेंट डे के अलावा, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन में मनाया जाता है। और इस पर हम बात ही कर रहे थे कि ग्रामीण महिलाएं जो

मूर्ति निर्माताओं और समाज को ये याद दिलाता है कि जब तक ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर

हर्ष और समर्पण।

पर ये जो होने वाला है अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में, जो कि सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला है, ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, आयोजित किया

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: जय हिंद, ये नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मुंशी, और आज हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। इस संवाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीवान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर वी के मिश्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार सभी को।
0: दोस्तों, आज की तेज तर्रार दुनिया, या मैं कहूँ डिजिटल सोशल मीडिया वाली दुनिया, ऐसे में आज की इस युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और राष्ट्रीयता से जोड़े रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक महारैली का आयोजन करना तय किया है, जिसमें हम बात करेंगे अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। चलिए लेकर चलती हूँ आपको वी के मिश्रा जी के पास, और जानती हैं उनके विचार कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।
1: थैंक यू वंशी जी। सबसे पहले तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एंड एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू सुभारती यूनिवर्सिटी एंड इंटायर टीम ऑफ अखंड भारत। ये शब्द ही कितना आपको रोमांचित करता है जब अखंड भारत हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, और मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से स्कूलों को इंटीग्रेट करके बच्चों के बीच में एक उत्साह जागृत किया है, ये कमेंडेबल जॉब है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये सपना कि हमारा भारत अखंड रहे, और वो स्वाधीनता की जो उन्होंने एक विजन रखा था, उस विजन को कंटिन्यू करते हुए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो बहुत ही रोमांचकारी है। और बच्चे जिस रूप में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे मेरठ के लिए गर्व का विषय है।
0: मिश्रा जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आज का युवा जो है अपने देश के गौरवशाली इतिहास को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो रहा है, या इसमें अभी और हमें एफर्ट्स करने की जरूरत है?
1: देखिए, एफर्ट्स करने की तो जरूरत डेफिनेटली है, बिकॉज जड़ों से जोड़े रखना ये हमारा दायित्व तो है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और युवा एक ऐसी शक्ति है जिसको सही दिशा उनसे सीनियर लोग ही दे सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। लेकिन एक चीज हमें और भी देखना पड़ता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता में युवा पीढ़ी को उनकी दिशा को जानने की भी कोशिश हमें करना पड़ेगा
0: जी।
1: जैसे जो हमारे समय की बातें थी हम युवाओं पर थोप नहीं सकते हैं, हमें उनको सुनना पड़ेगा। तो जो आज हमारे यूथ हैं वो स्वाधीनता में अगर संस्कार जोड़ लें तो वो शायद हमारा परिपक्वता में हम पहुंच जाएंगे, मैच्योरिटी में हम पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं माई फ्रीडम एंड्स या अदर्स फ्रीडम एंड्स वेयर माइन वाज बिगिन। तो आपकी एक सीमा होती है, उस सीमा में रहते हुए अगर हम स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली सही है। यूथ को इस दिशा में हमेशा बनाए रखने के लिए हम सभी का दायित्व है कि उनको अपने रूट्स से जोड़े रखें, हम उनको बताएं कि हमारे रूट्स क्या थे। अगर हम उनको बताएंगे नहीं तो वो जानेंगे नहीं, तो जो भी संस्कार उनके आसपास में मिल रहा है वो उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से जितना है वो यूथ हमारी पावर है, और भारत में अब हम भारत जब बोलते हैं तो शायद वो इंडिया से थोड़ा हट के फीलिंग शुरू हो जाते हैं, और उसमें भी जब अखंड भारत वर्ड आता है तो हम केवल अपनी इंडियन या भारतीय संस्कृति को आज के परिदृश्य में ना देख के आज के 50 साल पहले किस रूप में हम, या 100 साल पहले किस रूप में भारत था, शायद उस ओर जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बताते रहें कि क्या हम थे और क्या हम हैं और क्या हमें होना है।
0: तो बिल्कुल सही कहा आपने विके जी। जैसा कि बीते दिनों कुछ कॉम्पिटिशन्स हमारे द्वारा कराए गए, यानी कि सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा, ऐसे में आपके स्कूल से काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया
1: जी।
0: तो उनके अंदर क्या एक्साइटमेंट आपको देखने को मिली?
1: एक्साइटमेंट तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है
0: जी।
1: पहले सुभारती का जो एक्साइटमेंट था वो हमारे तक पहुंचा
0: जी।
1: हमारा एक्साइटमेंट टीचर्स तक पहुंचा और टीचर्स का बच्चों तक पहुंच रहा है। तो मैं आपके एक जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जिस रूप में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर शेयर होते हैं, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्टिविटी आज हुई या नहीं, बट टीचर्स को पता है तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट में मेकिंग कॉम्पिटिशन हो या अदर कॉम्पिटिशन हैं जहाँ पर हमारे बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हम बच्चों को देना है वो है प्लेटफॉर्म। हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन तो स्कूल में भी करा सकते हैं, बट जब एक कोई मुहिम कोई बाहर की संस्था और खासतौर से मेरठ में रहने वाली कोई हमारी बड़ी इंस्टीट्यूशन भारती जैसी कराती है, तो बच्चों को लगता है कि हमें कोई दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है
0: जी।
1: तो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं बच्चे, और ये हमारे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो सुभारती प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं दिल से अपने दीवान परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम तो सफल हो ही जाएगा
0: जी।
1: लेकिन ये सफलतम स्थान प्राप्त करे, इसके लिए बेस्ट विशेस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्योंकि आज का ये डिजिटल एरा है, हर बच्चा मशगूल है सोशल हैंडल्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी एक अलग दुनिया चल रही है
1: जी।
0: ऐसे में आपकी और उनके गार्जियंस की जिम्मेदारी शायद डबल नहीं ट्रिपल ना जाने कितने टाइम्स हो जाती है। ऐसे में एक बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना इनकलकेट करना या उसे देश हित के बारे में प्लस उसके स्वयं के हित के बारे में जागरूक कराना ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए आप उनके गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए सभी गार्जियंस जो हमारे दीवान पब्लिक स्कूल परिवार से हैं या मेरठ से जो कहीं भी किसी भी स्कूल में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि जब हमारे आसपास गड्ढे होते हैं ज्यादा तो हम बच्चों के हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं कि कहीं कोई उनका पैर फिसल न जाए। तो चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो सोशल डिग्रेडेशन हो, कहीं ना कहीं सोशल हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, वो वैल्यू सिस्टम में भी कह सकते हो, बट वो ऐसा नहीं कि परमानेंट है, आज है कल नहीं रहेगा। तो एज अ पेरेंट हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के हैंड होल्डिंग करें, उनको डेली सुने, और जो भी कार्यक्रम हमारे संस्थाओं के माध्यम से होते हैं वो कंपटीशन की भावना से नहीं बल्कि शेयरिंग एंड केयरिंग की भावना से उसमें पार्टिसिपेट करें बच्चे। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम मेरठ में देख रहे हैं जब से है, चाहे वो एयर शो का होना हो, चाहे एशियन चैंपियन बन के हमारी गर्ल आई हो, तो ये बहुत बड़े ऐसे ही मोटिवेशन हो। क्रिकेट के फील्ड में अगर देखें तो ऐसे देश का नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बच्चे यूथ, कि हमें उनपे शक नहीं होना चाहिए लेकिन सुरक्षा हमें देनी है। तो शक और सुरक्षा में डिफरेंस यही है कि हमें क्वेश्चन नहीं लगाना है कि वो कितने अच्छे या बुरे हैं, जजमेंट नहीं है, जज नहीं बनना है, लेकिन ये जरूर उनको संभावित खतरों से आगाह कराना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर एक सीड जैसे होता है ना, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो हम पेड़ के पहले जो बीज होता है उसको जमीन के नीचे डालते हैं। अब वो पेड़ हो सकता है जमीन के अंदर जो बीज जा रहा है उसको कष्ट हो रहा होगा कि मुझे जमीन के अंदर क्यों डाला जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसी से वो अंकुरित होके बड़ा वृक्ष बनेगा। तो ये हमें देखने की जरूरत है, और सभी पेरेंट्स से मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो, उनके आगे पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, बस साथ चलते रहें।
0: बिल्कुल मिश्रा जी, विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की भावना
1: जी।
0: या बात करें एक सांस्कृतिक भावना को डेवलप करने के लिए हमारा स्कूल यानी कि दीवान पब्लिक स्कूल क्या आगे सोच रहा है करने के लिए?
1: देखिए सबसे पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज के टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज है
0: जी।
1: वो सहगामी क्रियाएं हैं, साथ साथ चलने वाली, पढ़ाई के साथ साथ चलने वाली, और हम शिक्षा को पूर्ण मानते हैं हेड हैंड एंड हार्ट से।
0: yes.
1: हेड जो हमारे दिमाग में आता है, हैंड जो हम एक्टिविटीज करते हैं, और हार्ट जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो ये तीनों साथ साथ डेवलप करने के लिए हमारे बच्चों के लिए हम वर्कशॉप्स भी

0: आते हैं और सुभारती के जो भी हमारे फैकल्टीज जानने वाले हैं, मैं तो वहाँ से काफ़ी हेल्प लेता हूँ, चाहे वो डांस डिपार्टमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट हो, और वहाँ से जो भी हमारे पास फैकल्टी आके हमारे बच्चों को मोटिवेट करती है, बिकॉज हमारे बच्चे नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस लेवल के कल्चरल इंटीग्रेशन है, ऑलरेडी है, और जो भी हमारे बेस्ट रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइज करते हुए, और जितने कॉम्पिटिशन अभी इस बीच में मेरठ में हुए, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे, कहीं डांस हुआ है तो उसमें आए हैं, कहीं और ऑन स्पॉट रॉक बैंड परफॉर्म किया उसमें आए हैं, कहीं स्टेम के कॉम्पिटिशन हुए उसमें आए हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल डेवलपमेंट में कल्चरल परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशन हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के पार्ट हैं, एक्स्ट्रा नहीं।
1: सर, एक वर्ड सुभारती यूनिवर्सिटी के।
0: हाँ, सुभारती यूनिवर्सिटी तो एक वर्ड से अगर हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से माचिस की तीली छोटी होती है बट जब वो जल जाती है तभी बाकी दिए जलते हैं
1: जी।
0: तो जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं सुभारती की तरफ से वो यूनिक होते हैं
1: जी।
0: और शुभकामनाएं सभी को, सुभारती यूनिवर्सिटी के पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को और यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को, कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं मेरठ के लिए, वो अतुलनीय है, ऐसे ही करते रहें, और जहाँ भी हम जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, हाथ से हाथ मिला के हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दम

0: मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: जय हिंद। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम व सुभारती विश्वविद्यालय से। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल रक्षापुरम में, और आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही बनाना होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि आगामी 21 अक्टूबर 2026 को सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है महारैली, और इस महारैली में हम मना रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो दिल करता है कि देशभक्ति की इस लहर में बस डूब जाए और बहते चले। लेकिन क्या आपको पता है कि 21 अक्टूबर अपने आप में कितना बड़ा दिन हो जाता है? इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक महोदय कर्नल पाल प्रमोद जी से। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मंत्रिका जी।
0: तो जैसा कि सर 21 अक्टूबर 1943 की बात करें, जब नेताजी ने अखंड भारत की घोषणा की थी सिंगापुर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, वास्तविकता तो यही है
0: जी।
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता को पाने के लिए, और बहुत से मतभेद उनके उस समय के नेताओं से, खास तौर से गांधी जी से हुए, और उन्होंने अपनी अलग आजाद हिंद फौज बनाई। आज जिस भारत को स्वतंत्रता की जो प्रशंसा करें या स्वतंत्रता का जो श्रेय ले रहे हैं जो लोग, वास्तव में वो श्रेय जाना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने तो अखंड भारत को स्वतंत्र करा दिया था 21 अक्टूबर 1943 को ही, और सिंगापुर में उसकी स्थापना हो गई थी, जिसको कि रिकॉग्निशन भी मिल गई थी बहुत से देशों से
0: जी।
1: लेकिन दुर्भाग्यवश वो चीज अमल में नहीं आई, और हमको अब ये पढ़ाया गया कि स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिली, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है
0: जी। मैं ये जानना चाहूंगी कर्नल सर कि जैसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किताबी दुनिया से निकालकर जमीनी स्तर पर ऐसे जो राष्ट्रीय अभियान होते हैं, जैसे कि सुभारती विश्वविद्यालय आगामी 21 तारीख को करने वाला है
1: जी,
0: उससे जोड़ना कितना जरूरी है? एक स्कूल के प्रबंधक होने के नाते आप इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं?
1: मैं कहूंगा कि ये सुभारती विश्वविद्यालय की बहुत ही सुंदर पहल है, बहुत ही सुंदर प्रयास है कि युवा वर्ग को जो वास्तविकता है, और खास तौर से अपने आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान स्वतंत्रता के लिए रहा है, उससे अवगत कराना। और जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने ये बच्चों को नेताजी के जुड़े हुए संदर्भों पे ऐसे कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और प्रश्नोत्तरी जैसी चीजें तैयार करी हैं, और बच्चों को उनको उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो ये यही एक तरीका है हम अपने बच्चों को बता सकते हैं
0: जी।
1: तो बच्चे तो जो स्कूल कॉलेजेस में अभी तक भी जो सिलेबस किताबें हैं, वो तो वही पुराने लोगों की बनाई हुई हैं, जिसके अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं
0: जी।
1: पर अब धीरे धीरे नई एजुकेशन जो नीति है उसके अंतर्गत प्रयास चल रहे हैं, वो तो समय लेंगे। स्कूल्स कॉलेज के लेवल पे तो ये इतना जल्दी नहीं है, लेकिन ये सबसे सुंदर प्रयास है जिसमें बच्चे हर स्कूलों के ले रहे होंगे। हमारे तो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, टीचर्स भाग ले रही हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छा उनको एक एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिल रहा है।
0: बहुत बढ़िया, मुझे जानकर खुशी हुई। मैं कर्नल सर ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप इस स्कूल के जैसे प्रबंधक हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप भी कुछ अपना योगदान दें फर्दर इस प्रोग्राम के बाद, तो आप क्या करना चाहेंगे ताकि बच्चों में राष्ट्र चरित्र को बनाने का एक मौका मिल सके?
1: देखिए, ये जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनको देख के दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और हम अपना जैसे बहुत से सब्जेक्ट SST वगैरह पढ़ाते हैं या जनरल नॉलेज के पीरियड्स चल रहे हैं, हम अपने सिलेबस के अंदर जोड़ेंगे इन चीजों को, नेताजी के ऊपर पूरा हम उस तरह की प्रश्नोत्तरी हम और बड़े अभी तो थोड़े से बच्चों ने करा है लेकिन हम सब बच्चों के लिए कंपलसरी करेंगे उनके लिए ऐसा हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि ये सब चीजें उनको बताई जाएं।
0: जी ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहने वाला है लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जैसे एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी स्कूल के पास होती है बिल्कुल वैसे ही अभिभावक के पास भी होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने देश के बारे में जाने, राष्ट्र हित के बारे में जाने और अपने संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहे।
1: देखिए मेरा अभिभावकों से सामूहिक रूप पे मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि वो इकट्ठे हों, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ और बहुत से मसले होते हैं उतना वो नहीं हो पाते हैं लेकिन इस मुद्दे के लिए हम विशेष कुछ तरह की मीटिंग अभिभावकों के साथ रखेंगे।
0: जी
1: जिस तरह से कि मंथ में पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, पीटीएम होती है, इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी संडे को अभिभावकों को बुलाएं और उनको भी इससे जोड़ें।
0: बिल्कुल बहुत सही जानकारी आपने दी और मुझे लगता है जो भी आप इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हैं ये काफी अच्छा रहने वाला है और अभी से मेरी शुभकामनाएं सुभारती विश्वविद्यालय की शुभकामनाएं आपके साथ है और हम इस पहल में हर कदम पर आपके साथ रहने वाले हैं।
1: धन्यवाद, हम भी आपको पूर्ण सहयोग करेंगे।
0: तो दोस्तों आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान का पवित्र कर्ज है। मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए इस महारैली में सम्मिलित होकर के एक छोटा सा प्रयास करते हैं इस कर्ज को चुकाने का। हमसे जुड़ जाइए 21 अक्टूबर 2026 को और इस रैली में हमारा सहयोग कीजिए और अपना कीमती वक्त दीजिए। जय हिंद।

आपणा मला कमा माया मानवी

हेलो मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमारहेड़ा गांव से सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम। टाइम की बात करें तो 12:21, 15 अक्टूबर आज की तारीख और शुक्रवार तो कल है, आज है गुरुवार। दिन बहुत शानदार और बारिश हो रही है। आपके यहाँ पर क्या मौसम का मिजाज है? लेट मी नो ऑन माई नंबर 9639012111। हिम्मत वाला मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना आप इंजॉय कर रहे हैं और ये गाना सहारनपुर वालों के नाम।

0: जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम सुभारती विश्वविद्यालय से। आज हम आए हैं वर्धमान एकेडमी गंगानगर में और मेरे साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं यहां के प्रिंसिपल साहिबा मिस रेखा शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज रेखा जी से बहुत सारी बातें होंगी और हम जानेंगे कि 21 अक्टूबर को क्या ऐसा खास हो जाता है जो आज इस मुकाम पर हमें ले आया है कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास रचा जाता है, केवल पढ़ा और लिखा नहीं जाता। और जब बात आती है 21 अक्टूबर की तारीख की तो जनाब मायने बदल जाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमें ये पता चला कि जब इरादे बुलंद हों, जब हौसले बुलंद हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। 21 अक्टूबर 1943 का वो गौरवशाली दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब आप कुछ ठान लेते हैं तो आप उसको कर कर ही गुजरते हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में ये घोषणा की कि हम अखंड भारत की स्थापना कर सकते हैं, यानी हमारा जो भारत है वो अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस अपना मना सकता है। और इसमें हमारे साथ 9 देशों की स्वीकृति भी आई, हमारे साथ 9 देश खड़े रहे। हमारे पास सब कुछ था, अपना ध्वज, अपना राष्ट्रगान, अपनी फौज और अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को सभी लोग नहीं जानते। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुभारती विश्वविद्यालय ने आगामी 21 अक्टूबर 2026 को एक ऐसी महारैली का आयोजन किया है जहां पर मेरठ के विभिन्न बड़े बड़े या मैं कहूँ प्रेस्टीजियस स्कूल्स हिस्सा लेंगे। और इस रैली में बच्चों को कोशिश की जाएगी इस बारे में बताने की कि जो हमारा सच्चा इतिहास है वो क्या कहता है। इसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे और हमसे जुड़ेंगी मिस रेखा शर्मा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जो सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही ये रैली है, आपके इस पर क्या विचार है?
1: सबसे पहले तो मैं सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार, क्योंकि ये जो जानकारी आप प्रदान करने चले हैं विद्यार्थियों के लिए जी, ये अपने आप में एक विशेष जानकारी है। जनरली स्कूल्स में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो जाता है, और समस्या यह है कि हम सेलिब्रेट तो सब कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन क्या हम उन मूल्यों को इम्बाइब भी कर पा रहे हैं?
0: yes.
1: या वो जो वास्तविक जानकारी है उससे हमारे बच्चे उसके जानकार भी हैं या नहीं है? तो ये बड़ा एक चिंतित करने वाला प्रश्न है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन शायद वो सेलिब्रेशन के रूप में ही मनकर रह जाता है। अब ये जो एक महीने से भी ज्यादा का जो एक प्रयास चल रहा है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम स्टूडेंट्स को ये जानकारी प्रदान कर पा रहे हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, केवल 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करना या 26 जनवरी को वंदे मातरम का गुणगान कर लेना, केवल यही वास्तविक स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन नहीं है या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नहीं है। सबसे जो चिंतित विषय जो आजकल नजर आता है कि बच्चों में जो बच्चों के जो मूल्य हैं, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में है या राष्ट्रीयता के बारे में है, वो सब कहीं ना कहीं आज हीन होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब ऐसे में इसी एक ऐसे मिशन के साथ आना जहां सारे शहर के स्कूलों को जोड़ लेना और फिर बच्चों को ये जानकारी प्रदान करना, तो अपने आप में एक सराहनीय पहल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं और वो यहां से प्राप्त जानकारी को स्कूल के बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भी शेयर करें कि उनका भी जो ज्ञान है वास्तविक स्वतंत्रता को लेकर, हमारी अखंडता को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, तो वो भी उसके प्रति जागरूक बने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। मैं रेखा जी ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अखंड भारत का ये स्वतंत्रता दिवस जो कि 21 अक्टूबर को मनाना जाना चाहिए,
1: हाँ।
0: हम मनाते भी हैं, लेकिन क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है, बच्चों में जानकारी का अभाव है, तो इसके चलते हमारा तो ये मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पर एजुकेशन प्रदान की जाती है वहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी दिया जाए जहां पर बच्चों को ऐतिहासिक चीजों के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, यहां के संस्कार के बारे में और सबसे स्पेशली सच्चे इतिहास के बारे में जानकारी हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, जो आजकल सबसे बड़ा चिंता का विषय है, आजकल का जो यूथ है वो अपने मिशन से, अपने मूल्यों से भटका हुआ है
0: जी।
1: आजकल हर अपनी जिद को पूरा करना कह लीजिए
0: जी जी,
1: या अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बड़ा आसान तरीका बनाया हुआ है, धरना दे दीजिए
0: जी
1: और वायलेंट तरीके से प्रदर्शन कर लीजिए और कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो जाती है सरेंडर करने के लिए, चाहे वो जायज है या नहीं है। तो ऐसे में बच्चों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी।
1: और जब सुबह की जो हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, यदि हम उसमें एक रेगुलर थीम इस तरीके की डाल दें कि हमें रोज हम अपने देश के बारे में बच्चों से बात करें, अपने शहर के बारे में बात करें, बच्चों को नहीं पता हमारे महापौर कौन है, बच्चों को नहीं पता हमारे विधायक कौन है, क्योंकि उनसे कभी इस बारे में बात नहीं होती। ये बात होती है केवल जब कोई पर्व आता है या कोई सेलिब्रेशन करना होता है स्कूल में, तो बहुत सूक्ष्म जानकारी उनको दे दी जाती है। तो ये उनके एक रेगुलर असेंबली का हिस्सा हो सकता है जिससे वो इन तथ्यों से जुड़े रहें, उनका रिकॉल किया जाना चाहिए जिससे कि वो उनके प्रतिदिन दैनिक जीवन का हिस्सा बने और उन्हें देश के बारे में, अपने शहर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, और वो ऐसी जानकारी नहीं हो कि हमने आज सुनी और कल खत्म हो जाए। इट शुड बी इम्बाइब इन देयर पर्सनालिटी एंड देयर कैरेक्टर। तो दैट शुड बी थ्रू मॉर्निंग असेंबलीज, थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज, जहां हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि बच्चों को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में हम उनको जानकारी दें कि कैसे एक विकसित भारत में हम कैसे, हमारा क्या, हमारी एज ए स्टूडेंट क्या जिम्मेदारी
0: होनी चाहिए।
1: तो उसके लिए प्रयासरत है विद्यालय और हम प्रतिदिन अपना ऐसा प्रयास करते हैं कि बच्चों में इस तरीके की जो भावना है वो विकसित की जा सके।
0: तो रेखा जी, आगामी जो कार्यक्रम है जो महारैली सुभारती विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रहा है, इसमें आपके स्कूल में क्या तैयारियां चल रही हैं, बच्चों में क्या उत्साह है, क्या जोश है इसके बारे में?
1: बच्चों में उत्साह है क्योंकि उन्हें एक इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला और एक जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, जब बच्चों को ये पता है कि शहर के बड़े बड़े स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मिलना और फिर एक प्रतिस्पर्धा के साथ उसके लिए तैयारी करना, तो बच्चों में इसको लेकर एक उत्साह है और वो जिज्ञासु है ये सब जानने के लिए कि क्या होगा, क्या कैसे होगा? तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज।
0: जी, तो रेखा जी, जैसा कि आज का सिनेरियो है, यहाँ पर बच्चा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भाग रहा है या मैं कहूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे का जो विवेक है डिसीजन मेकिंग का वो बहुत ज्यादा ऑल ऑफ सडन हो गया है। तो ऐसे में हम किस तरीके से बच्चे को ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन डिसीजन मेकिंग ना करे या किसी भी चीज को बिना किसी ऑथेंटिकेशन के माने ना, क्योंकि ऐसे में बच्चा अपने लक्ष्य से भटक तो रहा ही है और हमारे लिए एज एजुकेटर, एज अ इतने बड़े सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या जो हमारे गार्जियन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने अपब्रिंगिंग में कुछ इन चीजों को इंक्लूड करें ताकि आपका भी सहयोग हो सके और बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो भी बेहतर हो सके?
1: देखिए, जो अभिभावक, स्टूडेंट और स्कूल का जो रिलेशन है वो थ्री टायर है। अगर आप किसी एक को भी कमजोर कर देंगे या इग्नोर कर देंगे तो ओनली द स्टूडेंट वुड बी सफरिंग।
0: यस,
1: सो वी ऑल नीड टू वर्क टूगेदर। बीइंग पेरेंट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट दे शुड गिव क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन rather than, because we know that everybody is busy. But it doesn't mean that whatever you are working, whatever you are earning, it is for your kids only.
0: Yes.
1: And if you are not giving your quality time to them, so this money doesn't make any sense.
0: Yes.
1: अगर आपका बच्चा misleaded है, अगर आपका बच्चा divert है, अगर उसके बच्चे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की भी होती है, स्कूल की भी होती है, और वो तभी संभव है जब पेरेंट्स अपना क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, उसकी बात को ध्यान से सुने, उसकी जिज्ञासा को शांत करें। सेम इज कंसिडर्ड विद द स्कूल एज वेल। यदि बच्चे के मन में कोई भी जिज्ञासा है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम हम ट्रेस आउट कर पा रहे हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है बच्चा तो मुझे उसे इग्नोर नहीं करना है, मुझे उस बच्चे से बात करनी है। काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग स्कूल्स में कंपलसरी कर दी गई है। इन्हीं सब चीजों को लेते हुए कि बच्चों को चैनलाइज रखा जाए। अगर बच्चे हाइपर एनर्जेटिक हैं तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए
0: जी।
1: जो तब तक संभव नहीं है जब तक अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी, जब तक वो तीनों मिलके उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उस जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बच्चे और अभिभावक का ही है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सावधानी से और बच्चे की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझते हुए उनके विजन को पढ़ते हुए उनको गाइड करना है. एवरी टाइम अ पेरेंट और अ टीचर कैन नॉट इम्पोज.
0: यस,
1: वी नीड टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द प्रोसेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर डिसीजन इज बींग टेकन बाय द स्कूल और बाय द पेरेंट दैट इज गुड ओनली फॉर हिम. इफ यू विल इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड विल नॉट लिसन. इफ यू विल इन्वॉल्व हिम द चाइल्ड विल डेफिनेटली फॉलो यू. सो माय सजेशन इज कि बच्चों के ना तो बिल्कुल दोस्त बन जाए ना ही बिल्कुल उनसे एक किनारा कर लें. एक मीडियोकर पाथ हमें बनाना है जिसपे हम मिलकर बच्चे का एक संपूर्ण विकास कर सकें और उसे अच्छे बुरे को जज करने के लिए उस बच्चे को हम तैयार कर सकें कि वो गलती से या रैंडम कोई डिसीजन ना ले, पीयर प्रेशर में ना आए. yes. जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है.
0: हाँ.
1: क्योंकि उनके हिसाब से या तो गूगल बाबा सब कुछ है या उनके दोस्त सबसे अच्छे वैभिष्य हैं.
0: yes.
1: तो वो जो थिन लाइन है इन सबके बीच में हमें उसको स्टडी करना होगा और अपने बच्चों को के समग्र विकास के लिए उनका मानसिक बौद्धिक विकास करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना. तो यही मेरा जो संदेश है अभिभावक के लिए कि उन्हें अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी समस्याओं पर को सुनना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा रेखा जी. और मेरा भी यही मानना है कि इसमें पेरेंट, एक टीचर और एक विद्यार्थी, तीनों की उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी की हम सोचते हैं कि सिर्फ एक एंड से ही सब कुछ हो जाए. वो बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा, आपके बच्चे का नुकसान हो सकता है. दोस्तों आपको बताऊं, 21 अक्टूबर 2026 को जो आगामी है अभी, उस दिन सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम कुछ ऐसे मूल्यों पर काम कर रहे हैं जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास शामिल है, जैसे शिक्षा, सेवा, संस्कार या राष्ट्रीयता. इन सभी मूल्यों को हम साथ में लेकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए परस्पर है और तैयार है. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं. और मैं यही कहूंगी कि आप भी इस आगामी रैली में अपना योगदान दें, अपना कीमती वक्त दें. जय हिंद, धन्यवाद.

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: अमा मियाँ पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
1: जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभा आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। दम्मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दम्मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारा एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

मौसम नया बनाएंगे। मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का, परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी, बिना खड़ग, बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटि कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है। तो राष्ट्र अनुभूति नाम की इस पुस्तक में इसके लेखक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने हर विषय को ले लिया है, यानी हर वो संस्कार जो हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता मित्रों कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तक हमको सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका नाम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस अलौकिक कार्यक्रम में। ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक एक विषय हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। तो चलिए, फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे
4: हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किड पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

शौक जवानों के, कहीं कर तब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।

0: कैसेट्स और वीसीडी सोनोटेक ऑडियो पर उपलब्ध।
1: के पूछो के हाल मेरे घर वाली का
2: नाम आम पियो तो एक से एक रुपया दे दो।
3: अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
0: कैसेट्स व सीडी सोनोटेक ऑडियो पर उपलब्ध।
4: मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे शबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है।
5: एक बार नू कह दे अक मैं तुझे अच्छी लगूं।

0: दिन निकलता नहीं उसका उलाना पहला ले है।
1: अरे ऐसे नाचते तो ये हत्ती मर जाता बढ़िया था।
2: तेरे दिल ने कर गया खाली यो तेरा प्यार सबको।
3: मजा तो तब आता जब इसकी टांग तोड़ने वाले हाथ मारे खुद के होते।
2: अरे नहीं ना।

0: रोक ली अपने शेर को, और नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा। फिर कहेंगे लाला जी ने रिपोर्ट कर दी।
1: चल बे, ज्यादा हीरो बनता है
2: बात क्या, तुरंत के बात कर,
1: मैं बनाता हूँ तुझे हीरो।
2: और न जाने कितनी शादियां हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई है।
3: कदे चो

0: ना अड़ पिट के जा
1: होया मेरी लौंग तार ताला आई मन ने शर्म घर
2: डबला अपना उस लाल ने कहाँ छुपा रखा है।
3: शेर का शिकार कुत्ते नहीं किया करते।
4: पकड़ा जाना तो दूर अपनी चाल भी समझने नहीं देता।
5: गोरी गोरी कामनी के सावरे सावरिया
6: कैसेट्स व सीडी सोनोटेक ऑडियो पर उपलब्ध।

0: सेंट्रल सिटी सोनोटेक ऑडियो पर
1: जय हिंद नमस्कार। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इस महीने में इस टाइम पर किस किस फसल को हम बो सकते हैं। मैं हूँ वास्तु कृष्ण, आप जानते ही हैं जय जवान जय किसान हमारे कार्यक्रम का नाम है और ये कार्यक्रम में हम हमेशा चर्चा करते हैं फसलों की, खेत की, गांव की और कैसे हमारे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, सरसों, चना, मटर, गेहूं, इन सार जो फसलें होती हैं सबको बोने का टाइम शुरू हो जाता है। कुछ अगेती फसलें, कुछ पछेती फसलें होती हैं, तो हम बात आज इसी बारे में करने वाले हैं। तो चलिए पहले अपने कार्यक्रम को शुरू कर लेते हैं इस बढ़िया सी रागनी के साथ।
2: राम राम चौधरी साहब।
3: जी राम राम।
2: सब टाइम आ गया हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का।
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल।
2: बिटिया मुंबई आ चुकी है और बस दिल्ली पहुंचने ही वाली है।
3: हाँ, मैं मेहर को भेज देता हूँ बिटिया को लेने,
2: और इस बहाने बच्चे एक दूसरे से मिल भी लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा।

0: मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो तुम?
1: मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम और मैं फॉरेन जाके अपना फ्यूचर स्टार्ट करने वाले हैं। बस
0: तुम्हें क्या लगता है मैं अपने माँ को छोड़ दूंगा? नहीं
2: जा।

0: थैंक गॉड बाबा आप यहाँ आ गए। अगर आप ही सारा अरेंजमेंट नहीं करते तो मेरा तो यहाँ दिल भी नहीं लगता।
1: अरेंजमेंट? कौन सा अरेंजमेंट? मैंने तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया था। आप चिंता मत कीजिए, सारे इंतजाम हम खुद कर लेंगे, बस बिटिया को पता ना चले।
2: मैम हुआ यूं कि ये सारा इंतजाम मेहर जी ने किया था।

0: सोल अटैक कैसे?
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: किसान भाई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। पिछले कुछ कार्यक्रम में हमने चर्चा की है कि इस टाइम पर हमको कौन कौन सी फसलें करनी चाहिए। जैसे एक बार हमने सरसों की भी चर्चा की है, गेहूं तो आने वाले टाइम में हम बोएंगे ही, लेकिन अक्टूबर के इस टाइम पर हम किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, किन किन फसलों का टाइम चल रहा है और आने वाले टाइम में कौन कौन सी फसलें हमको बोनी चाहिए, उन सब की भी हम बात करने वाले हैं। तो बात सिर्फ सरसों की नहीं है, सरसों के अलावा सब्जियां भी होती हैं जिनकी बुआई हम कर सकते हैं। जैसे कि भाई सरसों की जो बुआई का टाइम तो ये बढ़िया चल ही रहा है, इसको तो हम बो ही सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरी फसल होती है चना। जी हाँ दोस्तों, कम पानी वाले खेतों में चना एक बढ़िया विकल्प होता है, लेकिन खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, खेत ऐसा होना चाहिए। चने के लिए किस्म और बुआई का समय, बीज जो होना चाहिए वो एकदम उपचार करने के बाद ही बोना चाहिए, या बीज बहुत बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड बीज लेकर आना चाहिए, किसी न किसी की सलाह ले लेनी चाहिए। और आजकल तो एआई का जमाना है, इंटरनेट आपकी जेब में है ही, तो हम चना भी बो सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें हैं जो आप बोना पसंद करते हैं वो भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। 9639012111 फिलहाल समय है आपके लिए बढ़िया सी रागनी देसी गाने का। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन

0: और स्पाइन रोग विशेषज्ञ लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: Warner Music.
1: सोनोटेक कैसेट।
2: किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और कौन कौन सी फसलें हमारे लिए लाभकारी रहती है, आजकल हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में ही। तो जैसे मैंने पहले भी आपको सरसों की फसल के बारे में बताया कि बहुत बढ़िया रहती है, किसान भाई अगर सरसों बोते हैं तो आजकल सरसों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो उससे अच्छी पैदावार होगी, तो अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल जाएगा। दूसरी फसल मैंने आपको बताई चने की। देखिए चने की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, चना पहले बहुत ज्यादा बोया जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन काफी कम हो गया है। चने का साग भी बिकता है। देखिए चना जो होता है डे वन से आपको कमाई करके दे सकता है। चने को आप साग के रूप में शुरू में बेचिए काट काट कर, और उसके बाद ये लान वाला जो चना होता है फिर आप उसे पका देंगे, तो फिर कच्चे चने यानी हरे चने भी बिकते हैं। उसके बाद फिर आप उसे पका देंगे या पका कर फसल को बेचते हैं, तो आप फसल पकने के बाद चना बेचेंगे तो फिर से आपको लाभ कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बिल्कुल चने जैसी फसल होती है मटर की। अब मटर की खेती कितनी अच्छी होती है और कितनी डिमांड रहती है ये तो आपको पता ही है।

0: मॉनसून अटैक कैसे?
1: कौन कौन सी फसलें बो सकते हैं, हम इस टाइम पर यही चर्चा कर रहे हैं। और आप सुन रहे हैं सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM। मैं हूं वास्तु कृष्णा। जय जवान जय किसान हमारा खेती किसानी का ये कार्यक्रम है। बात खेत की, बात गांव की, बात फसलों की होती है यहां पर। तो हमने बात की है कि चने की फसल अच्छी है, अगर आप बोना चाहें तो बहुत बढ़िया, आपको मुनाफा हो सकता है। चने की ही तरह मटर की फसल भी होती है दोस्तों, जहां मिट्टी और बाजार अनुकूल हो, यानी कि आपके गांव के, आपके खेतों के आसपास में मंडी है या कोई ऐसा बाजार है जहां पर आप अपनी मटर बेच सकते हो, सब्जी का कोई मार्केट, मंडी या पैठ लगती है, तो आपको और ज्यादा कमाने का मौका मिल सकता है। सब्जी आप आसानी से जहां बेच सकें, ऐसी चीजें आपको बोनी चाहिए। शलजम की अगर मैं बात करूं, शलजम की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, शलजम की खपत बहुत ज्यादा होती है। शलजम को जब जब भी आप मंडी में लेकर जाते हैं, जो बहुत सारे किसान भाइयों से हमारी बात होती है, उनका बताना है कि शलजम कितनी भी आप लेकर चले जाओ, 2 घंटे के अंदर आपकी फसल ऐसे ही बिक जाती है, और वो भी बहुत बढ़िया दाम के ऊपर। तो आप शलजम भी बो सकते हैं, मूली भी बो सकते हैं, इनकी भी बहुत अच्छी तरह से डिमांड मार्केट के अंदर बनी रहती है।

ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। इस महीने में इस टाइम पर हमें किन फसलों की तैयारी करनी है, कौन कौन सी फसलें हमको ट्राई कर लेनी चाहिए जो कभी हमने नहीं बोई। देखिए, फसल चक्र भी एक चीज होती है कि आप हमेशा ही गेहूं, ईख, गन्ना यही बोते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी में जो वो एक, हम इसे आसान भाषा में समझे तो खेत बोर हो जाता है। यानी कि अगर आप फसल चक्र नहीं अपनाते, यानी आप फसलों को बदल बदल कर बोना शुरू कीजिए, तो आपकी उपजाऊ क्षमता जो खेत की है, फसलों की है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जरूरी नहीं होता कि हमेशा बहुत सारी खाद, दवाइयां, स्प्रे ये सब करते रहें, हमको टेक्निक भी समझनी है। तो फसल चक्र को हमें अपनाना चाहिए। आप कभी मटर बो दीजिए, कभी गाजर बो दीजिए, कभी गन्ना बो दीजिए, कभी टमाटर बो दीजिए। इस तरीके से फसलों को बदल बदल कर बोने से भी खेत में इम्प्रूवमेंट आता है, मिट्टी में इम्प्रूवमेंट आता है, अलग अलग प्रकार के जो खनिज तत्व हमारे खेत में आ जाते हैं। और कुछ चीजें बचत करने के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। हमेशा बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां, स्प्रे, खाद पानी डालने से ही कुछ नहीं होता है। आप ऐसा भी सोचे कि हम बजट को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि यूरिया होता है वो तकरीबन 400 रुपए का या 350 के आसपास का, वो एक 50 किलो का कट्टा या बोरी आता है, वो डालते रहेंगे दूसरे किसानों को देखकर कि ट्रोली भर भर के हम वो डाले, उससे ज्यादा लाभ होगा, ऐसा नहीं होता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, तो आप अगर ढेंचा बो देंगे और उसको जुताई कर देंगे तो फिर आपको जरूरत कम पड़ेगी, यूरिया की जो है खपत कम हो जाएगी, यानी आपका बजट बचेगा। इसके अलावा आपको कभी कभी अरहर बो देना चाहिए, उसकी जड़ें खेत में छोड़ देते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है हमारी खेती के लिए, हमारी जमीन के लिए। इस तरीके से आप कभी कूड़ी वाला खाद डाल दीजिए, कभी आपको कैच वाला खाद भी डाल देना चाहिए। ये तरीके हैं कि कैसे हम अपनी जमीनों को और बेहतर बनाएं।

जी हाँ दोस्तों, यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस टाइम पर हमें कौन कौन सी फसलें बोनी चाहिए और किस तरीके से हमें अपने खेतों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें खर्चे कम करने चाहिए, बजट को रोक कर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सी मार्केट के अंदर नई दवा स्प्रे या कुछ खाद आ गया, हमें उसे तुरंत ही इस्तेमाल करना है। हमारे खेत को किन चीजों की जरूरत है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम अपने खेत में उसी चीज को डालेंगे जिसकी जरूरत है तो इससे बजट कंट्रोल होता है, यानी बेवजह डाई, यूरिया या अलग अलग तरह की जो नई नई चीजें आती रहती है वो नहीं डालना चाहिए। पहले हमें अपने खेत को संभालना भी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए और उसके बाद हमारे खेत को जिस चीज की जरूरत है केवल वही डालेंगे तो इससे बहुत ज्यादा लाभ हमारे को होने वाला है। आप किस तरह से फसलों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से फसल चक्र अपनाते हैं और किन किन फसलों को बोना पसंद करते हैं, क्या सब्जियां ज्यादा बोना पसंद करते हैं अगर मंडी आपके पास है या फिर कुछ और आप करते हैं, तो ये टिप्स अपने हमारे दूसरे किसान भाइयों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9639012111।

0: ओहो, ये आसमान में रहने वाले आज धरती पे क्यों कर?
1: मैं तेरी खातर आई सू।
0: अच्छा, पहले का दिन आई मेरी याद तन्ना।
1: तेरे बिना सारा चंडीगढ़ सुना सुना लग गया था।
0: अच्छा, जब भी तो यो रंग चढ़ रहा है।

ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार

0: परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं

0: जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा?
2: देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है,
1: ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
2: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
1: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
2: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है?
2: सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है,
1: इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओ, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है। जो नहीं पता, उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता। उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए। परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हां कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी, उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना, हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है, तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई है।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है,
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, माँ होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है, और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त, और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है, और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है। जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे, एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा, और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खानपान से होती है। अगर आप अपने खानपान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें, और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई, मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है। आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बतावेंगे जी। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
0: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आवे थे।
0: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड, यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
1: देखो, ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा।
1: यू हो जाए,
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
1: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
1: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब ये है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
1: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगी?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँ, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
1: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
1: देखो बात यो है, क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। माँ और बच्चे दोनों के लिए तो होवे है यो, इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूँ
0: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे हैं, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
0: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
1: ना जी ऐसा तो ना है, इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, पहला गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
0: अच्छा,
2: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
0: ठीक है।
2: और तीसरा जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
0: अच्छा।
2: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
0: ठीक है।
2: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे रहा है ना तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद भी करें।
0: अच्छा।
2: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
0: बताओ,
2: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे उसे।
0: अच्छा।
2: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
1: बिल्कुल हो जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
0: जी।
1: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सिहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: यानी IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी, आप क्या कहेंगे?
2: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVFCM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता। ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए। अच्छा। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
0: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर लें, तो क्या IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर ये बिल्कुल नहीं होने का।
0: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए? सेहतिया जी,
1: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
2: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
0: जी,
2: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
1: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी

हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR TB, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोले इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें करेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में। हर साल 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बातें चलती रहेंगी, आपको जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शेपंकर, जो इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को जनता का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। वो हमेशा छात्रों के बीच रहना पसंद करते थे और युवाओं को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा, विज्ञान और नैतिक मूल्यों के जरिए देश को बदला जा सकता है। इसलिए 15 अक्टूबर जो कि उनका जन्मदिन होता है, उसे विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें हमारी चल रही हैं विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम के छात्रों के लिए कुछ विचार थे जिन्हें अभी आपके साथ मैं साझा करूंगा। डॉक्टर कलाम का छात्रों के लिए एक बड़ा ही अच्छा विचार है, जो है, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसके बाद एक और विचार है कि छात्र केवल परीक्षा के लिए नहीं जीवन के लिए पढ़ते हैं। तो ये विचार हैं डॉक्टर कलाम के, एंड विचारों को माने तो वाकई में कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ मोटिवेशन देते हैं। तो इसीलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई को कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुकने ना दीजिए। फिलहाल सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारशे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में बातें चल रही हैं। अब इसके उद्देश्य समझ लेते हैं। तो छात्रों में प्रेरणा, नेतृत्व और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, शिक्षा के महत्व और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना, युवाओं को नवाचार, रिसर्च और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना इस दिन का उद्देश्य होता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2010 में मान्यता दी गई थी, हालांकि ये मुख्य रूप से भारत में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर के कुछ अन्य देशों में भी इसे स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कलाम को समर्पित विश्व विद्यार्थी दिवस खास भारत से जुड़ा है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बातें करेंगे विश्व श्वेत छड़ी दिवस के बारे में, जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन नेत्रहीनों के अधिकारों, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को सम्मान देने और उनके लिए सामाजिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आप इस दिवस के बारे में कुछ खास जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। जुड़े रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना अभिनंदास आरशे पंकज। आज हम बात कर रहे हैं विश्व श्वेत छड़ी दिवस के बारे में। अब समझते हैं ये श्वेत छड़ी है क्या। ये एक सफेद रंग की लंबी छड़ी होती है जिसका उपयोग नेत्रहीन व्यक्ति रास्ता पहचानने, दिशा तय करने और रुकावटों से बचने के लिए करते हैं। ये छड़ी न केवल एक सहायक उपकरण है बल्कि नेत्रहीनों की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और हम बात कर रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। चर्चा चल रही है विश्व श्वेत छड़ी दिवस को लेकर। अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो साल 1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने 15 अक्टूबर को व्हाइट केन सेफ्टी डे के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य ये दिखाना था कि दृष्टिहीन व्यक्ति भी समाज में समान रूप से योगदान देने में सक्षम है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में इसे अब दृष्टिबाधितों के अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं विश्व श्वेत छड़ी दिवस को लेकर। अब इसके उद्देश्य समझते हैं तो दृष्टि बाधित लोगों की सामाजिक शैक्षिक और व्यावसायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना, वहीं श्वेत छड़ी के महत्व और उपयोग को लेकर जनता को जागरूक करना, दृष्टिहीनता से जुड़ी सामाजिक बाधाओं को कम करना और उन्हें समान अवसर देना। भारत में इस दिन को कैसे मनाया जाता है, इस पर अगर चर्चा करें तो स्कूलों, एनजीओज और सामाजिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं, प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। समाज को जागरूक करने के लिए रैलियां, कार्यशालाएं और श्वेत छड़ी प्रदर्शन किया जाता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती, अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बातें करेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। हर साल 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देना है ताकि बीमारियों को रोका जा सके और साफ सफाई के महत्व को समझाया जा सके। आप इस दिवस के बारे में कुछ खास जानकारी रखते हैं या इस दिवस के बारे में समझा सकते हैं अपने लिखे शब्दों में, तो आप अपने लिखे शब्द हमें भेज सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर जाकर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। बातें हम कर रहे हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। इसके इतिहास में चलें तो साल 2008 में पहली बार ये दिवस संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF और ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा मनाया गया। इसका पहला आयोजन UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता वर्ष के तहत हुआ था। तब से ये हर साल स्कूलों, अस्पतालों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: सर आपका KYC अपडेट नहीं है, बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी से ये OTP बताइए। क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई है? रुकिए, ये बैंक नहीं फ्रॉड है। KYC अपडेट करने के नाम पर डाकू अब आपके घर नहीं आपके फोन पर आते हैं। एक गलती और आपका बैंक खाता साफ। पहली बात, बैंक कभी भी फोन पर OTP, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और जरूरी बात, कॉल काट कर सीधा अपने बैंक ब्रांच से बात करें। आपकी सतर्कता ही आपकी कमाई को सुरक्षित रखेगी। साइबर फ्रॉड से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, खासकर बच्चों में साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना, डायरिया, निमोनिया, फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। बातें चलती रहेंगी, आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। बातें हम कर रहे हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। अब बात करते हैं हाथ धोने के 5 सही समय WHO के अनुसार जो बताए जाते हैं। तो सबसे पहला समय होता है जब आप खाना खाने वाले हों, तो खाने से पहले आपको हाथ धोने हैं। इसके बाद अगली तरफ बढ़ें तो सोच के बाद आपको हाथ धोने हैं। वहीं किसी बीमार व्यक्ति को अगर आप छूते हैं तो उसके तुरंत बाद भी आपको हाथ धोने हैं। अगर आप बाहर से घर आते हैं तब भी अपने हाथ अच्छे से धोएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: फंस गई।
1: मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के माध्यम से। बातें हम कर रहे हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। अब बच्चों के लिए आसान संदेश और स्लोगन हम यहां पर जरूर देना चाहेंगे, उन पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। तो जैसे एक स्लोगन है, साफ हाथ स्वस्थ जीवन, और इसी के साथ साबुन से धो हाथ, बीमारी को कहो अलविदा। हर बार खाने से पहले धो लो हाथ, साबुन से बेहतर। ये कुछ स्लोगन हैं। अगर आप इन्हें कुछ अच्छे तरीके से बोलें अपने बच्चों के सामने, उन्हें समझाएं इन स्लोगन्स के साथ, तो वो आपकी बातों को समझेंगे और अपने हाथ अच्छे से धोएंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।